उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार।

पूरा तौर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो।

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kuch saaye, kuch parchhaiyan, kuch chahat ke sajde. Kuch behte baadlon pe rakhi umeedein, barasti rahin, tarasti rahin. चांद आसमान में जड़े सुराख की तरह झांकता रहा और रात किसी अंधे कुएं की तरह मुंह खोले हांफती रही। रास्ते पांव तले से निकलते रहे, न रुके न थमे, न रोका न पूछा जिंदगी किस तलाश में है। जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वा उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर अभी तक कुछ बीन रहा है, कुछ ढूंढ रहा है।

जब से बलम घर आए तो जियरा मचल मचल जाए। लता जी की आवाज में गीत आप सुने फिल्म आवाज।

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: ये उजाला रेडियो है, आपका मनोरंजन रेडियो स्टेशन. आप सभी को स्वागत है.

वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन उजाला रेडियो।

0: Ruud Oldin. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं सविता सिंह एंड साधना लीला की आवाज में गोल गप्पा का नगमा पेश किया गया है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और यहीं से ला रहे हैं आप लोग की फरमाइश। हेलमंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला के कल मुंडन संस्कार है। हेलमंड में रहते हैं अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार एतवार 24 तारीख मई को होने वाला है। मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि छोटे से अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते। हेलमंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर पापा किरण भागोला और मामा दनिशा भागीराथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते और बहन ईशा भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार और दुलार के साथ पेश है।

हेलमुंड के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। मुंड संस्कार के वृक्ष पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनीशा भागीरथी प्यार प्यारा बेटा के लिए बहन ईशा भाई के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। हेलमुंड के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भागोला का कल मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनीशा भागीरथी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

कौन कह रहे वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के हेलमुंड के रहने वाला नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का काम कल मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार के खुशी के मौके पर पापा किरण भागोला एंड मामा दनिशा भागीरथी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश करें

हेलमोंग के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मून संस्कार है। खुशी के मौके पर पापा किरण भगोला एंड मामा दनीशा भागीरथी प्यार प्यारा बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है एतवार 24 तारीख मई को। खुशी के मौके पर सुतमेर और एंधोव के रहने वाले आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतू पोता के लिए, पर नानी रुकमीन जिबोत सहतू पर नाती के लिए, पापा किरण भगोला और मामा दनीशा भागीरथी बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते, काकी शरीसा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचंद और फुफा होने वाले फुफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए, और दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश करें।

के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मून संस्कार है। खुशी के मौके पर सूत्रमेर और एंधोव के रहने वाले आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहितु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जीबोत सहितु पर नाती के लिए, पापा किरण भागोला और मामा दनीशा भागीरथ बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दोपुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते, काकी शरीशा रामचरण, फूफा संजय सुखचंद और होने वाले फूफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए, दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाई शुभकामना के साथ नहमा को फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। खुशी के मौके पर आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है।

हेल मोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आज सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का मुंड संस्कार कल है हेलमोन में जो रहते हैं। खुशी के मौके पर आज सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ पेश है।

सालमोन के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है खुशी के मौके पर। आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना के साथ आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है, पूरा परिवार के साथ मुंडन संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है, कल मुंडन है, खुशी के मौके पर आजा सुभाष भागोला और आजी गीता भागोला सहतु पोता के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है और इस मुंडन संस्कार के खुशी के मौके पर दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भागोला बेटा के लिए बधाई शुभकामना आशीर्वाद प्यार दुलार के साथ पेश करें।

हेलमोंड के रहने वाला है अंश ईशान भागोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के खुशी के मौके पर दो फुआ आश्मिनी और सिमरन एंड काका कवेश भागोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना और प्यार दुला

कल जबकि इतवार 24 तारीख में है तो हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भागोला का मुंडन संस्कार होने वाला है। इस खुशी के मौके पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की जा रहा भी। भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भागोला को हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे अंश ईशान भागोला को। परिवार भगोला फरमाइश अभी हम जारी करने वाले हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद जरूर सुन लेना। सुनवलो उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है 15 फ्राग फॉर मार 100 यूरो ऑफ यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.net।

जल एतवार 24 तारीख मई को हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार होने वाला है। खुशी के मौके पर आज सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश किए। अंश ईशान भगोला का मुंडन संस्कार कल होने वाला है और इस खुशी के मौके पर फरमाइश करें प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतो पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश है।

0: बाकी मौसी सब कहाँ है भैया? पंडित के बोलैले की ना,
1: हेलमोंड के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है। खुशी के मौके पर आज सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए दोपहुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश करें।

ईशान भगवाला का कल मून संस्कार है खुशी के मौके पर। आज सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना और आशीर्वाद के साथ फरमाइश के।

अभिनंदन संस्कार है खुशी के मौके पर। नहमा को फरमाइश के आजा सुहास भगोला और आजी गीता भगोला सहतू पोता के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन और काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते बधाइयां और शुभकामना आशीर्वाद के साथ पेश के। हेलमोन के रहने वाला प्यारा सा नन्ना सा छोटा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर। इस बार फरमाइश करने वाला है काका कवेश भगोला और काकी शरीशा रामचरण बेटा के वास्ते बधाई शुभकामना आशीर्वाद के साथ।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल 24 तारीख मई को मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के एंडहोफ के रहने वाले हैं। हुआ अश्विनी सुखचैन भगोला और फूफा संजय सुखचैन बेटा के वास्ते, दो भाई अक्षय और वीरेन भाई के वास्ते बधाइयां और शुभकामना के साथ फरमाइश के। हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है और इस खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश कर रहे हैं आजा सुभाष भगोला और आज गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाइयां शुभकामना और आशीर्वाद के साथ।

हेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में आजा सुभाष भगोला एंड आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा अंश ईशान भगोला का कल मुंड संस्कार है खुशी के मौके पर सूत्रमेर और एंधोव के रहने वाले हैं आजा सुहास भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए पर नानी रुकमीन जीबोत सहतु पर नाती के लिए पापा किरण भगोला और मामा दनीशा भागीराथी बेटा के लिए बहन ईशा भाई के वास्ते दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के वास्ते काकी शरीशा रामचरण एंड फुफा संजय सुखचैन और होने वाले फुफा रोहन रामजवान के तरफ से बेटा के लिए दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ पेश है।

बेलमोन के रहने वाला अंश ईशान भगोला का कल मूंड संस्कार है। इस मूंड संस्कार के खुशी के मौके पर सूत्रमेर और आइंदहोफ के रहने वाले हैं आजा सुभाष भगोला और आजी गीता भगोला सहतु पोता के लिए, पर नानी रुक्मीन जीबो सहतु पर नाती के लिए, पापा किरण भगोला एंड मामा दनीशा भागीराती बेटा के लिए, बहन ईशा भाई के लिए, दो फुआ अश्विनी और सिमरन एंड काका कवेश भगोला बेटा के लिए, काकी शरीशा रामचरण एंड फुफ्फा संजय सुखचैन एंड होने वाले फुफ्फा रोहन रामजवान की तरफ से बेटा के लिए, एंड दो भाई अक्षय और वीरेन की तरफ से भाई के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना के साथ ये नहमा को फरमाइश किए। हेलमोन के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला का कल मुंडन संस्कार है। इस मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से, और ये भी भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि छोटा सा नन्ना सा अंश ईशान भगोला को छोटा सा अंश ईशान भागोलो को ऊपर वाला भगवान हर एक बीमारी से हर एक मुसीबत से दूर रखे। छोटा अंश ईशान भागोला को ये मुंडन संस्कार जो कल होने वाला है बारंबार बधाई हो। उजाला रेडियो के जरिए जितने से फरमाइश था समाप्त होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त परिवार भागोला। आज

सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl आपके फरमाइश के लिए 15 आवाज फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो टू एक हिदम एक ईमेल भेज naar info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो ये है सुनने वालों हरी कामकाज के लिए चेक ऑन से वेबसाइट उजाला पे इंटरनेट सनीचर है सनीचर 23 तारीख मई का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो पर यहां तक आपने सुने हैं हमने पेश किए हैं प्रोग्राम मैं हूं लॉयड महावीर एक वेंस यूली अलमाल एन हेल फाइन दाग फाइन वीकेंड फाइन पिंगस्टर वीकेंड हेट वर्ड मोई वीर हेट वर्ड वर्म लेट ऑफ द किंडर लेट ऑफ द आउचेस एंड ब्लाइव ड्रिंकन है

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कैसे लगा आपको द बेस्ट ऑफ द 90s फना होके मैं प्लेलिस्ट द एस्ट 70s हैव कोक ओरिजिनल ऑफ द ड्राई टाफल रेडी दी कॉम तरान फन मोहम्मद रफी मुझे फ्रासिंग से हैं रोन दिट वी फन द मेरा हीर ऑफ ट्रेंडी इवन टाइम चेक इट इज 5:30 इन नीदरलैंड जहां भी आप प्रोग्राम को सुनत होंगे हालैंड में हालैंड से बाहर रोपा में रोपा से बाहर सारे विश्व में Shwiti Sranang Kondre me, feel free to send us a WhatsApp message in the studios on 020-020-363-0808 363-0808. You're most welcome in the hit zone. Ik heb twee goede dance tracks voor je. En we doen even deze Kherpe Party hey, van Bacha, Ashtagil en Melody. Maak er een leuke party van.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

यकीन इनके साथ दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में ऐसे मौसम में हमसे तो पूछ फीतना दिल सॉन्ग द न्यू फिल्म भूत बंगला एर पॉपुलर ऑन फैक्ट्री डेड मशीन फन उजाला रेडियो यो हो द तू ही दिसदा निकिता गांधी एंड अरिजीत सिंह. Ik heb the best of the 70s voor je ready en het is Kishorda on the beat of Shankar en Jaikishan met het prachtig lied uit de film Aqua Kome, Organa Kabul hai, Teri Umar Nadan hai.

बस कर बस कर इतनी सी बात अभी चांद एलिट कांत बीच बिगिस मापा कुमुतिक सह एलिट म्यूजिक वार म्यूजिक कैनस ऑनसेटेंट फन हैबे गनोटे वास्केनलिक सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल हेल अपार्ट दिस साउंडट्रैक टुसा ऑल दी हिट्स डोर द फिल्म सैम बहादुर एंड फिल्म आउट इट यार 2023 इतनी सी बात De Hit Zone, ik zit eraan tot 7 uur vanavond. En na mij neemt hij het over om 5 over 7 Rutten Ramdulari Pandey met zijn Saturday Night Fever, The Late at Midnight. Ondertussen gaan we even lekker swingen met deze 90s Dilmera Chelte Chelte. Een bekende pokoe van Udit en Elka komt uit de film Bekaboe.

मोहम्मद रफी आपको सुनाए तमाम मुस्लिम भाई और बहनों के लिए जो आने वाले बुधवार मई की 27 तारीख ईद उल अजहा मनाएंगे सारे विश्व में मशक्कत के साथ। दिल दिल दिल वसोकर पॉपुलर फोर हियार एंड द साउंडट्रैक कॉम फन सुनिधि चौहान एंड देवी कुमार द फिल्म एक दीवाने की दीवानियत एंजॉय इट इन द हिट जोन।

Ek heb een prachtige Down Memory Lane vir jy ready. An everlasting soundtrack by Sangeet Kedewia Shadidi en Mohammed Rafi. Een bekende pokoe en komt uit de film Hare Kaanch Ki Churiya, waar die original soundtrack op de draaitafel hem aapko sunayenge. ऐसन मौसम में हमसे तो पूछ दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में सुन गाना

जुनून से भरा हुआ फल पसी। सुन गाना आपके आहें न भर जाए, चुन लिया मैंने तुम्हें।

7:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 7/23 तारीख है और वो भी मैं साल 2026। स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। स्वागत आप सभी को हम करते हैं, आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, तहदिल से स्वागत है आप सभी को। रतन का प्यार भरा नमस्कार और अरापर्स है। शुभ वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। और क्या मौसम है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस तरह होना चाहिए वैसे ही है आज का ये मौसम, कल भी था और कल भी रहेंगे। एंजॉय। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनने वालों, नए पुराने लोकल सॉन्ग्स के साथ आपका दिल फिर एक बार हम बहलाएंगे और वो भी रात्रि में 12 बजे तक, 5 घंटे। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका दुलार चाहिए। मुझसे पहले सुंदर सा प्रोग्राम हमेशा की तरह शनिवार को बनाए हैं आप सभी के मनोरंजन के लिए। 4 बजे से 7 बजे कुलीखा बड़का भैया सतीश रामदास मिसीर जी, हमने तो एंजॉय किया है हमेशा की तरह। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने भी एंजॉय की है। सतीश खत लेकर खनी तूफान पिंकस्टर वीकेंड, और भैया जी को हम कहेंगे थैंक यू, वेल धन्यवाद, शुक्रिया। ऑल टाइट फाइन ओम योर स्टेम टूर यंग एंड डैश एंड फ्रेश, तू जाने दो। Enjoy your weekend, भैया। और इस शनिवार का मेरे प्यारे सुनोल जो आखिरी 5 घंटे बचे हैं आपका और मेरा साथ रहेगा, मौका दिया जा रहा हूं हमेशा की तरह, हम आपको मौका दिए जा रहे हैं स्टूडियो में ऐप करने के लिए। और जो लोग हमेशा ये कश उठाते हैं उन सभी के नाम से एक लोकल हम चलाते हैं। दूती रत्नी ज्ञान खाए खोमा दस द लोकल सराय मसौंदर नाम नतुलक नति सौंदर, मौका जब मिले है तो फायदा उठाओ। 020-363-0008 जहां पर आपको ऐप करना है, हाय हेलो कहना है, आपका शुभ नाम और आप कहां से ऐप कर रहे हैं बस ये कहना अहल काफी है, लेकिन आपको भी मौका दिया जा रहा है ये कहने के लिए। ऑफियंस नेलो नंबर विल ऑफर रुस्तखा। तो आप व्हाट्सएप करें 020-363-0008 लगातार। और मेरे प्यारे सुनाल आपको ये भी मालूम रहे कि आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें के लिए दिन सख से आप फिर दफ्तर को तार कर पाओगे। और मानख नतुलक गसलोते फवीग ट्वेदे पिंक्स्टरदाग, तो दिन सख से सैटरडे सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, जो भी आप करवाना चाहेंगे, जब भी आपको उजाला रेडियो की जरूरत पड़े और तार के जरिए हमें कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो ये मुमकिन है। वही दफ्तर के दिन और दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 020-409-0807 लेकिन आपके कामकाज के लिए आप जब भी चाहोगे आप मिल कर सकते हैं, क्योंकि मिल जो है आप रोजाना कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन लगातार। ओक्टाइडेंस फीस दाख माँ का लमाल नहीं आई, आप जहां पर भी रहिए भैया इन न्यू सीलैंड ऑफ ये बेन इन अलास्का आप माँ नहीं आई, जब भी आपको जरूरत पड़े वो उजाला रेडियो को आप अवश्य मिल करें। info@ujala.nl और मेरे प्यारे सुनो वालों, हमेशा शनिवार को आपको बताता हूँ और कई लोग भी

जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर। तो वहां जाकर कनेक्ट हो जाइए उजाला रेडियो के साथ। तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर पाओगे और वो सूचना भी आप बांट सकते हैं अपने लाइन पर। To get connected with Ujala Radio on the socials or abone rin of Ujala Radio of YouTube. Here jo hum wahan par upload karte hain aap sun paoge aur shayad download bhi kar paoge. In ieder geval kan je het luisteren. Oké, mere pyare suno walo, hum shuru karenge aaj ke program. Aapko ye bhi maloom rahe ki jo log app karenge studio mein, हमेशा की तरह 8 बजे के बाद आपके लिए गीत हम चलाएंगे 8 बजे के बाद, और जिस तरह से ऐप आएंगे अंदर उसी हिसाब से भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे। हाँ, नीमन फोर्ट्रेक एंड देरी से तू ऐप करिए। तन्ना जी ये पूछे कि ए भाई कब हमारे गनवा आए, तो देरी से भी आए तू जाने दो, हमें सुलत ना दिए यार, तू जाने दो ना, ये हमें मारे नहीं। Enjoy your weekend, मेरे प्यारे सुनोलो। यहाँ मैं देखता हूँ साउटिन मिक्स, अरे भैया।

या धमाकेदार साउथ इन मिक्स मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में पेश हुआ है आज का ओपनिंग सिलेक्शन हियर ऑन यू आर। और 10 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में, 3 मिनट फोर क्लॉक फन हाल फाख। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी को। या वॉज एफ स्वीट हियर मैन अच्छे न्यू लेकर कूल लेकर कूल हो गए माँ, बहुत गर्म यहाँ स्टूडियो के जो आईने हैं वहां से इस वक्त ये घाम जो है सूरज जो है वहां से अंदर आते हैं। एंड दैट इज वेल यमर वन दन हैप्पी एक्स्ट्रा वार्म हियर। हालांकि राम ओप सही मरम ब्लास्टी तो गर्म हवा मारती उसने लेकर कूल। मेरे प्यारे सुनो लो, रतन का प्यार भरा नमस्कार और अरापर से फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी को। सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूँ एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। और जब भी मौका मिलता है शनिवार को अलसत खान एवं रतमख दन बेनेकर और आपका दिल बहला रहा हूँ विद ब्यूटिफुल लोकल्स। और आज सेवा में बहुत सारे नए इस साल का और जो आज रिलीज हुए हैं, कल रिलीज हुए हैं, पिछले हफ्ते रिलीज हुए हैं, मार कुछ पुराने भी हम आप तक पेश करेंगे। तू जाने तो कैसे हम प्रोग्राम में हरदम जंप फुट करेला, कभी ऊपर कभी नीचे। 020-363-0000 जहां पर सब कोई ऐप कर सके हैं। और एक गीत हम ड्राई कर ली और इतने जना हम देखिला इतने जने हमें ऐप करी से कि अब तू ऐप करिए तो तोर गाना जो है गनवा तोर हम ड्राई करब सीकर वही तो 9 बजे के बाद वंट 8 बजे से 9 बजे वो ब्लॉक को एकदम फॉलो है। तू जाने रमियान खराब ना करे तू तो मेरे प्यारे सुनने वालों आप भी चाहते हैं 020-363-0000 en laten we het alleen maar op de app hebben over het programma। दफ्तर के कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों आप दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर करें, जो नीत ना स्टूडियो डारोवर ऐप बेल मेट मेट कंटोर इस 020-409-0007 और या दैट कैन वनाफ दिनसडे मंगलवार से शनिवार तक, क्योंकि सोमवार को बैराकी है। तो सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक 020-409-0007। मार तू ना मांगे गोरे तो तू जाने तो मेलवा कर दे और मेलवा जब भी तू मांगिए तू मेल कर सके है info@ujala.nl। अमरीश भोला सिंह अरे बाप रे, एक मैशअप ये भी गाएंगे, हैनी मैशअप, चलिए सुनिए है।

या अमरीश भोला सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, कोई बुलाए और कोई आए, वो ये सॉन्ग है, कोई बुलाए और कोई आए, मुकेश का एक नगमा। और मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ मेरे प्यारे से नौ खात अतल एरक्सनल और, लेकिन आप ऐप कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, हम तो सोचिए आज कोई ना ऐप करी, वेरवा इतना 20 साल सब चल गए स्त्रांत घूमे वूमे, और जैसे मोयवेर रहे तब बहुत फेस वेस भी रहे, मतलब बहुत लोग ऐप करे ऐप करे। और एगो बोलिल है कि पहले रतन को हम सुनीला ओकरे बाद हम जाला घूमे, तू खराब करत हुई है मात मखवेल खिलवाड़ तू कर सके है, मैं हम ना विश्वास करी ला आनो कांग। ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनने वालों, और अफिशा की आवाजें, ये गीत इन दोनों ने मिलकर भी सजाए हैं, बनाए हैं, आप तक पेश कर रहा हूं। और अभी जेरी खयाम का एक नगमा आप तक पेश करेंगे। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव फन यू आर स्टूडियो रोटरडम।

0: जेरी खयाम मेरे प्यारे सुनने वालों, मैट सेन अर्बन मैशअप। कल मेरे प्यारे सुनने वालों, आज तो लोगों की सेवा हम करेला, लेकिन कल मैंने भी सोचा है अगर मौसम ऐसा रहा तो खा एक लेकर उगवान ले। मैं तू जाने हम स्तरांत वरांत ना जाएला। फिल्स तो वर्म और हम पारासोल के नीचे लेट के मजा ले ना, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। दोस्त दैट खातम नहीं वोट। मेरे प्यारे सुनो, आप जब ऐप करेंगे अब 020-363-0808, वर्गीत नीट या नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं और किस तरह का नगमा आप चाहते हैं। अंसनेल ऑफन सोल नंबर अलमल लोकल्स, geen originele film songs मालूम रहे, dus geen titels doorgeven। इगी जो आज और कल रिलीज हुआ है, कल वाला हम पेश करते हैं, अत इज हेटसेल्फ द नंबर, लेकिन तुफालग ट्वी verschillende zangeressen। जो कल रिलीज भइल है आज वाला अब भी छोड़ दे लातर साइड, हम जायला ट्राई करे तुलों खाते। ये है रिहाना, सम ट्रिनी पॉप हीर ऑन यू आर।
1: रिहाना

Ya. Rihanna, Rihanna. इनका वर्जन हमने पेश किया है, ये कल रिलीज हुआ है और आज जो रिलीज हुआ है वो काकड़ सुनाएंगे आरती सुखाई खिलावन और वही नगमा है। पेश करता हूँ नमाखी सेल्फ बसले सर के और मोई से गायल। आज तुलुंग शूरी बातें, यूली सैंड शूरी।

हाँ, आरती सुखाई खिलावन का फैशन आप शुरू है, आप ही बताइए। हमारे ये प्रोग्राम में जो भी कोशिश करते हैं अच्छे गाने के लिए, उन सभी को पेश किया करता हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि पसंद हर एक का अलग अलग होते हैं। वह बालमाल फर्स्ट खिलन स्मार्ट

even naar de Durkui Belkadil Beach programma. Hai mi paya. Tu mi repiere se nola 020-363-0808 per aapko app karna hai. जो लोग ये कश उठाएंगे उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे अभी 8 बजे की इश्तिहारों के बाद और जिस तरह से ऐप आए हैं अंडर उसी के हिसाब से हम गीत आप सभी के लिए चलाएंगे बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है हैव पेशेंस क्योंकि लिस्ट काफी लंबा चौड़ा हो चुका है आपका गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे दिस वीज नीट ongeduldig आप देरी से ऐप किए हैं तो देरी से भी आपके ऐप हम पेश कर पाएंगे दिस हैप फॉर ऑल geduld मैं देखता हूं ये जो गाने वाले हैं आप सभी के लिए इंदर कन्हैया

ब्रायन मोहन मेरे प्यारे सुनो जग लाल लाल लाल लाल लाल देखे है मुझको। मेरे प्यारे सुनो इस घंटे का आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और इस गीत के बाद 8 बजे के इश्तिहारे की ओर हम बढ़ चलेंगे। इश्तिहारों के बाद हम फिर हाजिर रहेंगे, सेवा करने फिर हम हाजिर रहेंगे आप सभी के लिए लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। और तब हम जाकर देखेंगे कि कौन है जो लोग ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए स्टूडियो में, उन सभी के नाम से गीत चलाना शुरू करेंगे। फुल हॉर्ड ऑफ हम बेन को फंड एपियस और जैसे मैंने कहा हेप फॉर ऑल खडूल्ड मेरे प्यारे सिनेमा वालों, ये सागर मलिक।

कभी खुशी कभी गम ना जुड़ा होंगे हम। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, 10 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 8 बजकर। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हुए, एंजॉय योर वीकेंड। शनिवार है, लंबा वीकेंड है बहुत सारे लोगों के लिए, पिंक स्टार वीकेंड। और जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रिय सुनने वालों इस वक्त काम पर है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, अस्पताल में काम करता है, ऑफ अब्दुल खावन सिकन हाउस में, फॉरऑल सिकन हाउस में ब्रूडर्स हमारा, तो दिल लगाकर काम करना है। एंड मोहर द लीचेस फॉर यूली आरबेज विटामिन साइन लाच नीत नान नचिए बचिए तो सब जान जाए कि तू फोकस ना बातें कम वहां पे मा वैल उजाला रेडियो पर फराल कोई किस पोईती वोईती जब जाइए दे रहे तो मुड़िया ना हिलाइए, हटवा भी ना हिलाइए, गुरवा भी ना हिलाइए, स्टेडी। मेरे प्यारे सुनने वालों, यहां से एपर्स के लिए हम गीत चलाना शुरू करेंगे और जिस हिसाब से ऐप आए हैं अंडर उसी हिसाब से गीत हम चलाएंगे। हैव टू ऑल टू लिव खडुल्ड यू हैव नीड टू ऐप अनदर स्टूडियो की कब हमारे गनवा आए तोर गाना आए सी कर रही था। पहला गीत जो है आइलिन जी के लिए हार्लेम शहर का। आइलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड। और मैंने गीत को तैयार करके रखा है आइलिन जी, तुम्हें तो आशा हम करते हैं कि आप पसंद करेंगे, बस आपके नाम करता हूँ।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे चैनल और किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन और उनके छोटे भाई फासिल ऑफ द जैक। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेवालो, एपर्स के नाम गीत हम चला रहे हैं। पहला गीत आइलिन जी के लिए था, आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से गीत मैं चलाऊं? तनमुटू एप नार 020-363-0000 तू हुआ ऐप करिए, अपन नाम बताइए तू कहाँ से ऐप करे है और तू कुंची मांगे है, गो चलता नगमा ऑफ एगो सोल। ठीक है, स्वागरी राज नंदन और आरती नंदन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अलमेर बैठ में, तो एंजॉय योर वीकेंड राज जी और आरती जी। एक गीत आप दोनों के लिए तैयार करके रखा है, अमोई जैसी स्टूडियो ब्लू ब्लूज मावेल मेटन मोए सॉन्ग इन एन जैज ब्लूज वर्जन।

दिल क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, और जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ब्यूटीफुल नगमा फिर से जो सजाया गया है जैसी ब्लू स्टाइल में हमने आप तक पेश किया है। 7 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 8 बजने में 7 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ नेग। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और गीत जो है हम नाम करेंगे ब्रीदा शहर में जो रहती है और जिन्होंने ऐप किए हैं गायत्री। डंकी वाल गायत्री आपके ऐप के लिए एक मेटली है, डिफरमासी नो मर्जी फ्रॉम सूरीनाम। ये गीत गायत्री के नाम और ब्रीदा।

या द फॉर्मेशन नो मर्सी मेरे प्यारे से वालों, ये था विनेश और प्रवेश एंड नटुलक रेंडी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.nl। हमारे प्रिय शहर में स्कीफनिंग शहर से भी ऐप आए हैं, जहां भैया लक्ष्मण जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो भैया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। लेकर फरतूफदार बैठ स्ट्रांड मैं फेवरेट स्ट्रांड एंड बुलेवार स्कीफनिंग। और भैया लक्ष्मण जी, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूँ, एंजॉय।

चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश हुआ है मेरे प्यारे सुनो हीरो निवार सैटरडे नाइट फीवर मैं रतन लाइफ एंड हायरार्की यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो आप तक पेश हो रहे हैं। हेमंत अनीता ik heb jullie bericht ontvangen. Ik weet niet wat er misgaat met de app, maar aap logon ke bericht mujhe mila hai. Bas aap intezaar kijiyega. Bahut druk hai. Aap logon ke liye bhi hum geet zaroor se zaroor chalayenge. Dus heb geduld. Ik heb bericht ontvangen. Het komt allemaal goed. Geduld hebben. Theek hai? Hum Den Haag ki or badh chalte hain. Wahan par Usha ji rehte hain aur unke app aaye hain aur Usha ji thank you well. हमेशा सपोर्ट करने के लिए ट्यून करने के लिए एंजॉय योर वीकेंड और एक खूबसूरत गीत द किंग ऑफ हिंदी पॉप की आवाज में उषा जी के नाम है डन हाग।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। लता जी का एक नगमा, आसिक मनीत फरखेज फंड फिल्म स्वीकार किया मैंने, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी हुसैन ने गाकर सुनाए हैं। 020-363-0008 स्टूडियो का व्हाट्सएप है मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी मौका है और जगह भी है आपके लिए गीत चलाने के लिए, तो अगर आप ऐप करेंगे ये कश आप उठाएंगे तो आपके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे एक गीत चलाने के लिए। मार खून खडुल थे बस, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग खडुल हो जाते हैं en dat moet je niet worden als je naar Saturday Night Fever luistert. Je 5 घंटे का प्रोग्राम है और जिस तरह से ऐप आते हैं उसी हिसाब से गीत हम चलाते हैं, और मैं क्या करूं। अमस्टरडम सेंट्रम में सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रभा जी एंड मैथ क्लाइन डॉक्टर इशाया, ब्यूटीफुल नाम इशाया, खनित युली आप भरपूर दोनों लेकर खनित फन मोये वीर फन युली साथ रखावन। एक गीत हमने तैयार करके रखा है प्रभा जी और इशाया जी, आप दोनों के नाम दार नमस्कार सिंद्रम

लड़की बड़ी अनजानी है, अपनी ही रंग और ढंग में फिर से गीत सजाया गया है और हमने आप तक पेश किया है हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों 9 बजे की ओर और बहुत सारे लोगों के लिए अभी गीत चलाना है, आप भी चाहते हैं तो नॉकमास 020-363-0808 पर आपको ऐप करना है। अमस्टरडम में इरेना या इरेना सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो डंकीवेल आपके ऐप के लिए इरेना। और एक गीत हमने तैयार करके रखा है सागर मलिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, इनकी आवाज में प्रख्त बखलाई दौड़ माइस्ट्रो ज्वाला लक्ष्मण पेश करता हूँ इरेना के लिए, ऑफ इरेना के लिए एटम्सडम।

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे से नौलो की देखा एक ख्वाब तू ये सिलसिले हुए। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं स्वागती सरवन नायजी तो डंकी वाल स्वाग आपके ऐप के लिए। सरवन नायगी जी, एक गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय यू आर।

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम, ये था नवीन सरजू, बाखुदा तुम ही हो। 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 9 बजकर। शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं, नहील खुएनावंत, वीकेंड है, शनिवार है, सभी मगन में है, सभी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुन रहे हैं प्रोग्राम टाउन में, बेशक है भीरल है, और जो बॉक्स रहते हैं तो उनके जरिए, ब्लूटूथ के जरिए वगैरह वगैरह है, बस खस्त्रीन और एकदम कस के। अरे ऐसे ना करिए कि ब्यूटी के तोड़ तो करिए, मारवेलों से तन ब्लै कि आप सभी भी अपने बाग बगीचे में एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। एंडमैन से दिए इन्होंने बालकोन, वो बहुत सारे लोगों के टाउन में ही मोबाइल में इसकी नंबर बालकोन अच्छे ऑफन शहर एंजॉय 023 6 3 0 8 0 8 पर बहुत सारे लोगों ने ऐप किए हैं, उन सभी के लिए गीत चला रहा हूं। हमारे लिस्ट पर नाम है स्वाग में इस वक्त हेरवाल्डो मरखरी जी, और उनके साथ भी है नईफ आसिफ और दुष्का। तो आप सभी को वहां हेरवाल्डो जी, मरखरी जी, आसिफ और दुष्का जी, एंजॉय योर वीकेंड, सो लुक खसेलख मेटलकार, और चुन किए हुए हैं उजाला रेडियो पर नाउ डनमाकुल मतो हेल माल ब्लाई। एक गीत हमने तैयार करके रखा है, दैट इज इंद्रनील रॉय, फोकस में सितम बीच स्विंगिंग, या मैं यूली कनेवल डांस, तो एंजॉय।

मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कांटा छुप जाएगा। इंद्रनील रॉय की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत हमने आप तक पेश किया है। और अब द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवना जी हिस्सा लेंगे। और ये गीत जो है रतनाम शहर में भैया जॉनी कालीचरण प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं, तो भैया जॉनी कालीचरण जी हमेशा चून करने के लिए, साथ देने के लिए थैंक यू, वेल बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत जॉनी कालीचरण आयत रतनाम, जो द लायन ऑफ बैठक रविंद्र सिंह सिवना जी गाएंगे, आपके नाम करता हूँ।

दविंद्र सिंह सिवना जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, लाख जतन कड़ी है या ब्यूटीफुल सॉन्ग और एकर गाना खेरमेज की तरह या दनिसत हीर लकम तलाई सर हैं। इस तरह जो जवान लोग गा रहे हैं तो बैठक का और भी मजा है। ऐसा दूनत खुद दविंद्र सिंह सिवना जी इस खून एन वेरल्ड आर्टिस्ट है डू तत सो खुद। और हमारे अंडर का जो दूर छुपे हुए था ये बैठक गान, इन्होंने फिर से जगा दिया है। और जब ही ये लोग गाते हैं ऑल दी यंगर ट्रांसोर एह बोंदरिंग उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। 6 मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 6 मिनट तो 4 o'clock फन हाल्फ 3। सुशीला चंद्रिका सिंह जी हम सल्फेन में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो डंक यू वेल सुशीला जी, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और गीत हमने तैयार करके रखा है आपके नाम, करता हूं द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन।

कहीं करती होगी वो तो मेरा इंतजार। द किंग ऑफ हिंदी पॉप, और आज द किंग ऑफ हिंदी पॉप के बहुत सारे गाने हैं। अभी कुछ देर में उनके कुछ और गाने हम आप तक पेश करेंगे। एक बैन ऑफ द टिटल्स अफगान और दंसी एक तोख दत्त उमर जी, एंड नेचुरली हैव हैव फील इट्स गजोंग। तो आज उनके गाने कुछ ज्यादा है प्रोग्राम में, मस्त से वेल मूवी। अलीचे फॉर माय कोलीगा बड़का भैया सतीश रामदास मिसिर जी, जो एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। तो बड़े भैया एंजॉय योर वीकेंड नेम रेंज एंड दिस फ्रॉम द लेजेंड शहीद वागी तुसैन सतीश रामदास मिसिर के लिए।

लो एक कली मुस्काई, और वो भी शहीद वागिद हुसैन की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। सैटरडे नाइट फीवर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिल्मी गाने नए पुराने फिर से जो गाया गया है, सजाया गया है, हमेशा ये प्रोग्राम में आप तक हम पेश कर रहे हैं। एंड इधर इन हीसन ए खदरायरान आप देख रहे हैं। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन को हम पेश करेंगे प्रोग्राम में मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत जो है नाम करेंगे दनहाग शहर में जो रहती है। मीके जी दांकिरल आपके ऐप के लिए, चून करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दांकिरल शुक्रिया, धन्यवाद। डेज इट्स फॉर यू।

दिल में तुझे बस आके कर लूंगा मैं बंद आंखें पूजा, करूंगा मैं तेरी। लता जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, ओरिजिनल फ्रॉम द मूवी फकीरा, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन की आवाज। अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनोलो, हम आपको लिए चलते हैं। संजय योढ़ा गीत गाकर सुनाएंगे और इसे हम नाम करेंगे आईफी जहांगीर, जो हम सदाम में रहते हैं, हमेशा सुनते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया, डंकी वेल आईफी। एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और ये नगमा आपके नाम करता हूँ।

या किस लिए मैंने प्यार किया, किस लिए मैंने प्यार किया। प्यार करके पछता रहे हैं, प्यार करना इतना आसान नहीं। प्यार इस ओकन लुक्स है, और प्यार अगर आप करें तो उसे निभाना चाहिए। तो दत्त नी मेर खान मार आलते चे बेसर फोड़ दूं। प्यार एक ऐसा चीज नहीं कि जिस पर दिल आ जाए उसे प्यार हो जाए, नहीं। प्यार है गहराई, प्यार एक एहसास है जो आप महसूस कर सकते हैं एकदम आपके दिलो दिमाग में, आपके नस नस में, आपके खून में, रग रग में दौड़ रहे हैं, उसे कहते हैं प्यार। मेरे प्यारे सुनो वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, और आमस्टरडम में भैया इकबाल ख्वाजा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो इकबाल जी डंकी वेल आपके ऐप के लिए, इकबाल ख्वाजा जी आए थे आमस्टरडम, गीत जो हमने तैयार करके रखा है चलाएंगे आपके नाम।

प्यार किया है एक बेवफा से, द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों। और इस घंटे का आखिरी गीत रिया कल्लू जी के नाम हम करेंगे एम्स्टरडम। थैंक यू रिया कल्लू जी, आपके ऐप के लिए ये नगमा आपके नाम करता हूँ, शेखर कुमार। इस गीत के बाद ब्रेक, मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्रेक के उस पार आप सभी से हम जरूर से फिर मिलेंगे।

थोड़ी सी सूरत आंखों में मस्ती, अरे हाय हाय मोए दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो लो उजाला रेडियो है ये आज की खूबसूरत शनिवार वारत या अंबीच कैसे सब बोले एक कॉमनी तेज मेरो माक नहीं आज मन उनमें से सुन सूला हाँ सूला आवन और शायद सूला नख भी होंगे क्योंकि बहुत गर्मी है मारत इज हियर स्टूडियो में बहुत कूल है और खसेलर भी है उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं वहां पर भी खसेलर है अच्छा तीन मिनट ओवर द क्लॉक वन तीन मेरे प्यारे सुनने वालों 10:10 गुजर चुके हैं मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे आपका यारों का यार और आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनो आपको मालूम होना चाहिए भी कि अगले हफ्ते मैं बुधवार और बृहस्पतिवार दो वुंसख एंड दोनों रख बैने कर वुंसख में बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6-9 और दिल की आवाज हम पेश करेंगे डोंडरहाफ्ट 28 रात्रि में 8-11 शनिवार को देर तक से दम बहने करनी थी या आपको मालूम रहे दम बहने करनी दम बहने कर फोकस में इससे स्वेर एक वेट नहीं थे दैट फॉरटेल एक वाल फोन ट्विक सुरिनाम से हेमंत और नीता प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं यार देखेंगे व्हाट मिस मेड मिल्चेस मार एक हैप यूली मिल अलमल वेल ऑन्फ़ंग एंड फॉर्स मैं यूली फॉर मैं होक कोई बात नहीं आप चून किए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं आज की प्रोग्राम के साथ नगमाओं के साथ तो हेमंत जी और नीता जी आज सुरिनाम डांक यूली वेल एक गीत जो अभी अभी रिलीज हुआ है किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला द गोलगप्पा सॉन्ग हेमंत जी के लिए और नीताजी के लिए अच्छी

या बनी है गोलगप्पा और बनी है गोलगप्पा। सेलेक्टा किंग सेलेक्टा सविता सिंह और साधना लीला जी की आवाजें। ही लमाल फेयर्स फ्रॉम द पेयर्स, मेरे प्यारे सुनने वालों, द गोलगप्पा सॉन्ग। मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और हमारे प्रिय सूरीनाम में ब्लाउग्रॉन्ड ब्लाउग्रॉन्ड ब्लाउग्रॉन्ड वहां से सुन रहे हैं प्रोग्राम जानी सर। तो जानी सर दंकीवेल आपके ऐप के लिए फैन दच्चे अफगस्टेमेंट अप यू आर दार इन इत मोई प्रख्तक सुरीनाम। मैंने गीत तैयार करके रखा है वन ऑफ द फाइनेस्ट सांगरेस इन दिनों का फारसी आलाइज मोहम्मद खान जी, इनका गाया हुआ गीत। Ik heb er twee vandaag in de playlist. Later komt er waarschijnlijk nog één. Ik moet even kijken. Lekin je giet. Aapke naam karta hoon. Janisar. Daar in het prachtige blauwgrond. Waar iedereen naartoe gaat. Altijd om lekker malai te eten. Henne.

कमर्शियलाइज मोहम्मद खान जी की आवाज, दीवाना हुआ बादल। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में, जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। और हमारी लिस्ट पर नाम है मार्स ब्रुक का, वीरेंद्र और चित्रा जी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, एंजॉय यूर वीकेंड। वीरेंद्र जी और चित्रा जी, ये गीत कुमार सानू और अभिदारम जान की आवाज में, आप दोनों के नाम।

नजर के सामने और जिगर के पास तुम रहते हो या कोई रहता है और वो है तू। ब्यूटीफुल आवाजें कुमार सानू जी द टाइगर और अभिता रामजान। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर और नॉन अदर देन शेखर कुमार जी की आवाज में गीत हम पेश करेंगे। शेखर कुमार जी गीत गाएंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे हमसे नाम का सत्या। सत्या जी आपके नाम करता हूँ फेन द चाफम तो ऑफ बेंट वासनी बेंट और भरपूर आप एंजॉय कर रहे हैं। ये गीत आपके नाम करता हूँ, एंजॉय।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। शेखर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, हमने ये खूबसूरत गीत आप तक पेश किया है। पांच मिनट मेरे प्यारे सुनने वालों गुजर चुके हैं सरे 11:05 ओवर द क्लॉक फ्रॉम हाल्फ एल्फ। धीरे धीरे वक्त निकला जा रहा है, मार वसैन तत्त 12 बजे मेरा ये प्रोग्राम सेहत रही नाइट फीवर 12 बजे तक आपका दिल हम बहलाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे सुनने वालों कि 11 से 12 बजे नखावाली मसूल नमर्स राय हमेशा की तरह और आज भी जेनी आइट अम्सरडम ओस दंकीवाल जेनी आपके एप के लिए फेन नचो काफ़ स्टेम बेन हिलमाल फेयर्स फन पेयर्स अलीचे फन टायरा ऑफ टीरा मैं एक दिन टायरा एक चटनी पाश हम आप तक पेश करेंगे। दिस इज फॉर

या टायरा मेरे प्यारे सुनोलो मैं थाड़ चटनी बैश। हमने ये गीत आप तक पेश किया है अतिस हिल वाल फेयर सन फेयर्स मेरे प्यारे सुनोलो। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे और ये गीत जो है हम नाम करेंगे अल्फा नंदराय में जो रहती हैं कमला। कमला डंकी वेल लेकर आपका स्टैम तो प्यू आर। कमला जी एंजॉय योर वीकेंड। और ये है निशल बी और रोहित चांद खूबसूरत गीत गाएंगे और आपके नाम करता हूँ।

या तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, रोहित चांद और निशल भी। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालो, एट दिस क्वार्ट फॉर एल्फ स्टूडियो तहत मेरे प्यारे सुनवालो, 11:15 का वक्त है और ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर। फारसिया लाइस मोहम्मद खान जी गीत गाएंगे और इसे हम नाम करेंगे सुरिनाम का। रिका खुदाबख्श जी जो आज पहली बार प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो रिका खुदाबख्श जी थैंक यू, वेल शुक्रिया आपके लिए। फारसिया का गाया हुआ ये नगमा मैं आपके नाम करता हूँ।

जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें मैं रात दिन यहाँ से वहाँ। फर्सिया जी प्रख्तक पखलाई दूर माइस्त्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुनो लो आखिरी नहीं अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। एंड दैट इज वनिता विली और राउती रामरूप, कुछ त्रिनिपोप हो जाए, जिसे हम नाम करेंगे यूएस ऑफ ए, अमेरिका टेक्सस में जो हमेशा चून किए करते हैं और ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेल, थैंक यू अजय और सुनीता जी और जितने लोग भी आप लोगों के साथ सुन रहे हैं ये गीत आप सभी के नाम।

बनीता विली और रवती राम रूप, मेरे प्यारे सुनने वालों, माई हार्ट इज बीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो पेश हुआ है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे और पेश करेंगे नाम वो जो इस वक्त काम पर है और चुन किए हुए उजाला रेडियो पर, टोनी इसरी आयत अलमेर, डांकीवेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए, दिल लगाकर काम करना एंड एंजॉय यू आर, ये गीत आपके नाम। इस गीत के बाद ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनवालों और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सांगड़ मारी की आवाज मेरे प्यारे सुन वालों, कौन है जो सपनों में आया और कौन है जो दिल में समाया, प्रख्त फलाए दौड़ माएस्ट्रो ज्वाला। मेरे प्यारे सुन वालों, 9 मिनट गुजर चुके हैं 11:05 का ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर का आखिरी घंटे में मान पड़े हैं, क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे, 13 मेरा साथ रहेंगे टिल मिडनाइट। एपर्स के लिए ये गीत चला रहा हूँ मेरे प्यारे सुन वालों, और इस घंटे में खावा अली मरुस्तख नुमर सराय, और हमारी लिस्ट पर नाम है रोहतक शहर का रोहनी कल्लू। डंकी वेल रोहनी कल्लू जी, आपके ऐप के लिए एक गीत शेखर कुमार की आवाज में हमने तैयार करके रखा है, आपके नाम करता हूं डंकी वेल।

इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। शेखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो हमने ये गीत पेश किया है शेखर कुमार की आवाज में, और अगले गीत जो है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन गीत गाएंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, सेहत रही नाइट फीवर में ये नगमा हम नाम करेंगे बरेरा शहर का, मफराव इन मनेर बिहारी जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चुन किए करते हैं, सुनते हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेल मफराव इन मनेर बिहारी जी, अद बरेरा, ये गीत आप दोनों के नाम।

मेरा अंतर एक मंदिर है तेरा। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो सैन, मेरे प्यारे सुन वालों, और इस गीत के बाद हम आपको ले चलेंगे अर्पिता श्रीवास्तव की ओर। खूबसूरत गीत ये गाकर सुनाएंगे हीरा निवार।

ये समा समा है दिलदार का, किसी की इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा। सुन लो हसीना अर्नोल्ड मलाहे और लुक। Ladies and gentlemen, remember this is UR Saturday Night Fever live vanuit UR Studio Rotterdamse, jou pech, hoor je hè?

सुन लो हसीना। अर्नोल्ड मला है मेरे प्यारे सुन वाला और लुक, और ये जो गाने वाले हैं खूबसूरत गीत देवन गोविंद। ऐ सनम जिसने तुझे ये चांद सी सूरत दी है,

जीवन गोविंद की आवाज में गीत मुकेश का आप सभी ने सुने हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और ले चलता हूँ हमारे भारत देश का एक फाइनेस्ट सिंगर साउथ खान, इनकी आवाज में रवि साहब का ये नगमा।

जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। साउथ खान की आवाज सैटरडे नाइट फीवर में आपकी बाढ़। मेरे प्यारे सुनने वालों, निजाम वागिद हुसैन की आवाज में गीत आप तक पेश कर रहा हूं।

घर तुम भुला ना दोगे, निसाम वाकित हुसैन, मेरे प्यारे सुनो लो, हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में अब निसाम के छोटे भाई इबो वागी तुझे, मैंने तुझे मांगा तुझे पा।

मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, और तूने मुझे मांगा और मुझे पाया है। इबो वागी तुसेन, मेरे प्यारे सुनने वालों, इबो के बाद सेवा में मैं देख रहा हूं विनोद राठौड़।

ये दुनिया वाले पूछेंगे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, विनोद राठौड़ की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 13 मिनट बाकी है 12 बजने में, 13.5 मिनट तो 4:12 और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। लकी सिंह को पेश कर रहा हूं आंखें तेरी, गीत का बोल है और एंजॉय।

ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ लकी सिंह, मेरे प्यारे सुनने वालों, आंखें तेरी। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं एम की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं देखता हूं कि शायद दो नगमाएं और आप तक हम पेश कर पाएंगे, उसके बाद हम यहां से रुखसत होंगे। सुबी, मैं शायर तो नहीं

मैं शायर तू नहीं, सुबी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त आ गया कि मैं आखिरी नगमा पेश करूं। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जितने लोग भी ऐप किए हैं, साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम आज हमने सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी पसंद किए हैं। Volgende week, zaterdag, dan ben ik er niet. 30 mei ko hum nahi rahenge. Lekin usse pehle, woensdag 27 aur donderdag 28, pesh karenge program Back to the Future aur Dil Ki Awaaz. Mere pyare suno, raha phool to fir khilenge, aur raha ye khoobsurat zindagi, to natürlich hum zarur fir milenge. सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

ताली तक जुम्मी तक ताली तक जुम्मी तक झाला आंबो तक झुकी तक ताली के नेते तक नक तक जुम्मी तक नक नक जुम्मी तक नक नक जुम्मी तक नक नक जम धरिता जग धरिता जन जाने को धारी दाबू तारी गेटे ताली धरिता जग धरिता जन जाने को धारी दाबू तारी गेटे जम धरिता।

0: everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, I'm Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: मैं अक्षय कुमार.
4: हाय एवरीवन इन हॉलैंड, माय नेम इज शाहरुख खान एंड यू आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो. उजाला रेडियो, उजाला रेडियो, उजाला रेडियो, उजाला रेडियो.
5: हाय जूडी, आर यू ट्राइंग दिस? इट्स वेरी नाइस. हैव मोर. हाय शाहरुख.
6: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
7: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ.
5: डाइटिंग?
8: लगता तो नहीं.
5: हाँ,

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

इस देश का बचपन भूलता हूँ। फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तू भी सुने है तो उजाला रेडियो।

सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: दिस इज उजाला रेडियो।
1: भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरालो महफिलें सजालो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए।